0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोना। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना है। मालक दा दर केड़ा है, सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे। ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के उनु चेते कर देने, ओथे ही।
1: You are listening to
0: भीतर दर कवन लहे।

क्रोध नाल प्यार करते हो। हजूर फरमाते हैं झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसी नाल त्रोह करना इनू मिठे लगते ने। हजूर कहते ने ऐ वाहगुरु इन्हों रख लै इन्हों अवगुणा तो।

आ भाई बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दें।

बौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावन हुक्म किए मन पावन दे रा पीड़े अगे जावना

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावा। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देव।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ कृपा करो सरवण।

उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तो भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, है इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेगा, ओदी ओट ओदा आसरा लवेगा, इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा, तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने, राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई, जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने, अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नु अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तू औरत हो गए, राज पवीखन अदक करो। जिस तरह पवीखन नु श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उन्नु सुख परमेश्वर देंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्नु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच

सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके बैकुंठ नु चले गए।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओ उठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया है, तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा ऋषि एक महापुरुष होके केड़ा अधर्म का काम करन लगे। पर परमेश्वर हमेशा अपने भगतों की रक्षा करता है। ये चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके, मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारियां तों पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड्डी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड्डी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड्ड के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ये दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा, ये मेरे वस की गल नहीं। ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे, हुण मेरे भी वस की गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया। ता ब्रह्मा जी कहन लगे, तेनू बचाना हुण मेरे वस की भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया, विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पास्यों इस नू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया। देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नूं बुरा के, तू भगत नूं दुख देना चाहे, इस करके अगर भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा औखा है।

मशीने ऊपर मिश्रे किस तरह उन्हें भगत अमरीक दी रखा की थी नाउ ने दे ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी त्रू भगत ते कृपा की थी भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के है सोने केसा वाला परमेश्वर ये ओ जिहड़ा परमेश्वर है वह भगतां दे वास है इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहिंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नूं प्राप्त हो गया आओ भाई तुसी भी सिमरन करो दुनिया के काम कार करदियां अते अपने जीवन नूं सुख

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

आपका सरहन सरसा नदी तो विछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे मुगल सरकार की कैद विच साका सरहंद।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

0: मिल गोपाल गोविंद ना कब झोरिया देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ न जाए सूर्य
1: होए पवित्र सही
0: चरना धूड़िया।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

सतगुर चरणी जाय पया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिस हर नाम सो

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आंदा ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हू अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़िओ। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख के चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्होंने चरणा उते आप सारे। उस माण विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साढ़े को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

तुलसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे।

मंगा रहे थे। तेरी हस्ती जे कोई है जीव तू कदे अपनी हस्ती नु पछाणन दा जतन करे ते फिर ओदी हस्ती दी पछाण हो जा। रोज पढ़दे करता पुरख एक ओंकार सतनाम करता पुरख आपा तां कीते होया ना ते साहब कदे ने करते की मित ना जाने की आ। जो सुभाव है सो वरती आ, जो ओनू चंगा लगदा सो वरतना है। कीते होए दी की हस्ती है के करते दे काम विच, क्योंकि ओ तां बीओ पूछ ना मसलत धरे, जो किछ करे सो आपे कर। आग्या आवे आग्या जाए आगे पाछे हुक्म समाए, ओदी रजा तो बारिया जाके की मैं वंगार प्रवान कर सकना। साहब कहंदे ने पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साए, पंजा तत्तां दी सारी रचना मेरे मालिक तू कर दिती। किसे दी हस्ती है कोई छेवां तत् बना सकिया होवे अज तक? गलती है मनुख दी इस सारी सृष्टि विच। कदे ख्याल करिए ना, इस धरती ते साडे वर्गे बाकी जीवां दी गल छड्डी, बाकी 84 लाख जीवां दी गल छड्ड दे, साडे वर्गे 4 अरब बंदे जीउंदे वसदे इस वेले, वध भी जाणगे घट भी रहे ने। इस 4 अरब बंदे दी बोझ वाली ए धरती, एक निक्का जिहा टुकड़ा है किसी सूरज दा जिहदी रोशनी नाल ए तत्ती है। विज्ञानक कहिंदे ए सूरज नालों किते अरबां वरे पहला टुट गई है, ठंडी हुंदिया हुंदिया जीवन दा कारण बन गई है। हालांकि कारण बनाउन वाला कोई होर बैठा है, कारण वो बना रहा है, वो कहिंदे ने बन गई है कारण, उसे सूरज दे दुआले घूम रही है। ते फिर कहिंदे ने अगे कहिंदे सन सूरज स्टेशनरी है, सूरज खलोता है धरती चल रही है। कहिंदे ने नहीं, हुण ए सारे परिवार नूं लैके मंगल बुध बृहस्पति नूं लैके इन्हां सारे ग्रहां नूं लैके सूरज भी चल रहे है, सूरज भी किसी महासूरज के चक्कर विच है। 150 करोड़ सूरजां दी गिणती भी कर ली इन्हां दे कंप्यूटरां ने कि 150 करोड़ सूरज आकाश विच चमक रहे ने, जिन्हां चों एक ए सूरज है, और इहदे नालों बहुत वड्डे वड्डे सूरज ने, बहुत छोटा सूरज है। जरा ख्याल कर लेना कि एक एडे छोटे जिहे सूरज दी छोटा जिहा टुकड़ा मात्र धरती, इस धरती ते 4 अरब बंदे, उन्हां बंदियां चों इक मैं, मेरी हस्ती की होगी? कुछ भी तां ना होया। पर नहीं, हर बंदा यह चाहुंदा है मैं केंद्र हो जावा, धरती मेरे द्वारे चले, सूरज मेरे द्वारे चले, चंद्रमा मेरी परिक्रमा करे, वाहेगुरु जो कुछ करे वो मेरी मर्जी मेरी इच्छा मुसाब करे। और जदों बंदा इच्छा करता है तो इच्छा की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि इच्छा की हद कोई नहीं। इच्छा बंदा लम्मी तो लम्मी करता है, पूरी होंगी नहीं तो फिर झोरा बन जाता। इच्छा विच दुख है, रजा विच सुख है। जदों बंदा कवे जो हो रहा है वधिया, जो कुछ होवे सिर मत्थे प्रवान करता चला जावे ते

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन उचित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई। सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले। सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना है, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई प्राणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह। मैनू तुसी आग्या दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई प्राणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले। तेनू फना करन दा फिकर कितों पै गया, तू फना करन दी ताकत कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा, जे मेरे चरणा चो तबाह करन दी ताकत तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा। मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता। सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढ़े ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक की बख्शिश की हुई, धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी। वाहगुरु वाहगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना, तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है। वाह

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तों विच घर दे नौकरा चाकरा नाल तां समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकता। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस्ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंटाई है तां ध्यान दिओ ते ओह पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सुचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।